गावन तुदन चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदन ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदन इंदर इंदर आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सति संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सूर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतन उपाए तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे

आओ। सब सुरती मेल सुरत कमाई, सब कीमत मेलो कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण न जाई तेरी तिल वडे आई। सब सतु सब तपो सब चंगे आईया, सिद्धां पुरखां कियां वडे आईया।

रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करिया। उडे ऊड आवै सै कुसा, तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल साध बल जाइए, तेरा अंत न परावरिया। राग आशा महला चौथा, सो पुरख इको ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा। सब त्यावै सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावह संत हो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा।

अनेक पढ़ बहु सिमरत शाश्वत जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेह चल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करै सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा।

हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आप हाथ दै मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब पैरन कौ आज संघरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा।

देव दैत जक्षन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बाद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर यस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, काट काट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ।

जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा। ताकौ कर्पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी पुत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता। जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है ताकि काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मोहर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक ना मानेओ।

मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहाओ जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया पंच दूत तुद वासु कीते काल कंटुक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तय सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे।

जिसका सबसे आधारो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लग तरिय, सब नानक ब्रह्म पसारू।

पार पाहे, जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे। कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे,

जिन्ने भी शरीर बैठे हो, 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहिब जी दे साडे जिंदगी दी रोशनी है, साडे जिंदगी नूं सवारन वास्ते इंज कह लईए पल पल निमक निमक सानूं सुचेत करन वास्ते। किते कहिंदे ने चेतना है तो चेत लै, किते कहिंदे ने क्या तू सोया जाग। भगत तन्ना जी ने सारा कुछ ही मंग लिया, खाट मांगो चौपाई सिरहाना, शायद अपा ये चीजा ना मंगिया हो क्योंकि छोटिया छोटिया चीजा। खाट मांगो चौपाई सिरहाना और तुलाई, कहने ने गां मज भी ओ दे जेड़ी दुध वाली होवे, गऊ पैस मांगो लावेरी ओदा बच्चा भी हो, गऊ पैस मांगो लावेरी। फिर क्या किते कहंदे ने घर की गी है चंगी जन तन्ना ले बन। धन गुरु अर्जन देव सचे पातशाह जी का पावन शब्द, कहंदे ने मंगया सारा कुछ है पर पकड़ नहीं, पकड़ नाम ना है। इत्थे गल बिगड़ जाती है जो बंदा मैं मेरी विच सुत्या भी वही गल्लां रिपीट होंगी, मेरी मेरी करते जन्म गयो। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच किते नहीं लिखिया तू कारोबार ना कर, किते नहीं लिखिया तेरे कोल इक्को ही घर होवे, किते नहीं लिखिया तेरा कारोबार उच्चा ना होवे। महाराज कहंदे ने रज रज के होवे पर पकड़ ना होवे, अटैचमेंट ना होवे, ये मेरा है। बड़ी अटल सच्चाई, कहंदे ने जन्म तो पहला भी जिस धरती ते तू दावा करके पेपर करके बैठा किसे दी सी, मौत तो बाद भी पेपर बदल जाएंगे किसे दी बन जाएगी। महाराज कहंदे ने महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछया कर फिर मेरा की है, सतगुरु कहणगे तेरा समा ही है, किसे नूं 80 साल किसे नूं 100 साल, रब करे लंबियां उमरां होण तुहाडियां साडियां, पर जिन्हां दी पकड़ ज्यादा होवे ना ए मेरी ए मेरी ओ मेरा ए मेरा क्यों नहीं बना। कदे भी वेख लेना जिस दी पकड़ हद तो वध होएगी वह बंदा उन्ना ही परेशान होएगा, वह बंदा अंदरों हिलिया होया होएगा, अपसैट होएगा। जिन्हां सवासां नूं जिस जिंदगी नूं बड़े प्रेम ते भावना नाल जीना सी उही जिंदगी कल्पना बन गई, उही जीवन तड़फना बन गई, उही जीवन ना सुख ना चैन हर वेले बेचैनी। महाराज कह रहे ने मंगना भी तो इत्थों ही है, हालांकि मंग के अत दे अमीर बन के भी मंगते रहना। गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच जदों भी आ जाइए भावें जिन्नी मर्जी दौलत शोहरत होवे, गुरसिख ये अरदास करिया है गुरु ग्रंथ साहिब जी दुनिया की नजरां विच मैं जो मर्जी हाँ तेरे दरदा मंगता ही है, तेरे घर का सेवक ही है। सियाने कहंदे ने जदों बच्चे रहोगे ते बचे रहोगे फिर थोड़ा भी ज्यादा लगन लग पेगा, छोटे घर भी घर विच भी वड्डा आनंद आउण लग पेगा, छोटे परिवार विच भी इंज लगेगा ते मेरे वर्गा जीवन किसी दा नहीं। बाबे नानक ने मैनू खास निवाजिया है, बाबे नानक ने मैनू कल्ला पहरावा नहीं कल्ला बाणा ही नहीं, सतगुरु ने मेरे मन मंदर तनवेश कलंदर कट ही। दुनिया ठाठ तीर्थां ते जा जाके इशनान करती पर गुरु ग्रंथ साहिब जी ने मेरे हिरदे विच ही वो बख्शिश वरता दित्तियां। ठाठ तीर्थ चल के आउणगे किवें जदों दी बख्शिश हो जाएगी।

योग। पतत पावन दया सिंध कृपा निध गुरु गरीब निवाज सचे पातशाह जी। जुग जुग अटल दसां पातशाहियां दी जगदी जोत समर्थ गुरु।

बोलो जी। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार। श्री भगवत जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक ले आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है। जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौनी दा वैताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। पंजा प्यारियां चौह साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वहाई देग के अणगिट किया तिना प्यारियां सच्यारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल तन चिरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां सिखी केसां सवासां संग निभाई धर्म नहीं हारिया तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रैत देख देख फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाए। बोलना जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाव दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी के बोल बाए।

आवाज जिसका संबंध शब्द नाल है, शब्द मन का तत् है, आकाश शब्द का विषय है, नक सूंघता है जिसका संबंध गंध नाल है, गंध मन का तत् है, धरती गंध का विषय है, स्पर्श का काम छूना छूना का संबंध स्पर्श नाल है, स्पर्श मन का तत् है, पर हवा स्पर्श का विषय है। हुण इस तरह समझ आती है मेरे गुरु ने कृपा करके बख्शिश की थी। कैसी बख्शिश? एक गल मैं स्पष्ट कह दिया, मैं अपने मन को खुद समझाना होवे मैं अपने मन नाल नहीं समझा सकता। बेशक के शरीर मेरे अंदर मेरा मन टिकया होया, मैं अपने मन नाल अपने मन नू नहीं वेख सकता। कारण की है, मेरे मन का स्वभाव ही कोई है, जिस मन नाल मैं वेखना चाहना उसका स्वभाव भी कोई है।

ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਹਤਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜੀ ਦਾਤ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 721 ਔਰ 722 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਿਅਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕੋ ਆਖਰ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦੇਨ ਜਾਗੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਨਉ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ। ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛੁ ਸੁੱਝੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਤਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ।
प्रभु को सिमरह से भी मुहताजी, प्रभु को सिमरह से सर्ब के राजी, प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी। सिमरनते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभु को सिमरह से पर उपकारी, प्रभु को सिमरह तिन सद बलहारी, प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे। प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरह तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरह बसै हर नेरे। संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे पाग, प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभु कै सिमरन कब हुना चूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन निःचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन। प्रभु कै सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार। सिमर है से जन जिन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहुकुंत जाते। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकार। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता, सोत मीत न पाई मन ऊहा, नाम तेरा संग सहाई। जय महापयान दूत जम दल, तह केवल नाम संग तेरा चल। जह मुश्कल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरह, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपहु मन मेरे, नानक पावह सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन पर, हर का नाम जपत निस्तर। अनेक माया रंग तिख ना बुझावे, हर का नाम जपत आघावे। जेहे मार्ग इहो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कूट लख बाही, नाम जपत तै पार पराही। अनेक बिघन जह आए संगार, हर का नाम तत्काल उधार। अनेक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हौ मैला मल कब हुन धोवै, हर का नाम कूट पाप खूवै। ऐसा नाम जपहु मन रंग, नानक पाइय साध कै संग। जेह मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जेह पेंडै महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा को ना सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जय महापयान तपत बहु काम, तय हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहा त्रिखा मान तुझ अकरख है, तह नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मान तन रंग रते रंग एक, नानक जन कै बिरत बबिक। हर का नाम जन कौ मुकत जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब पर न भंग। हर का नाम जन की वडयाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत काश नाही बेयोग। जान राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा।
हर हर जन कै मालख जीना हर धन जन कौ आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुकत बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत परताप दुरत सब नसै संत का संग वडभागी पाईऐ संत की सेवा नाम ते आईऐ नाम तुल कश अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान जोग अभ्यास कर्म त्रम किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमय कर राती वर्त नेम करह बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड प्रथमी फिरै चिर जीवै महा उदास तपी सर थीवै अग्न माहे होमत परान कनक अशव है वर भूम दान नेउली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमुख निमुख कार शरीर कटावै ताओ पी होमै मैल न जावै हर के नाम समसर काश नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीरथ देह छुटाए गर्भ गुमान न मन ते हुटाए सोच करे दिन स अर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही कौ बहु साधना करे मन ते कबहु न बिखिया टरे जल धोवै बहु देह अनीत शुद्ध कहाँ होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उधरे पतित बहु मूच बहुत स्याण पजम का पौ व्यापै अनेक जतन कर त्रिशन ना त्रापै भेख अनेक अग्न नहीं बुझै कूट उपाव दरगह नहीं सिजै छूटस नाही उप पयाल मुहे व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै जे को आपू ना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै जे को अपनी सो बालूरै साध संग ए होमै शोरै जे को जानम मारण ते डरै साध जना की सरणी परै जिस जन कौ प्रभ दर्स प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मै पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊचा जाका मन होए सगल कीरीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखै सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर धन कौ धन तेरो नाओ निथावे कौ नाओ तेरा थाओ निमाने कौ प्रभ तेरु मान सगल कटा कौ दे वहदान करण करावण हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जन हो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मैं उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन वख बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जिह कट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार ए अन्या सो प्रभ सदा संभाल जिन किया ते सुचीत राख नानक निबही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सुवार सिगारिया गर्भ अग्न में जिने उबारिया
बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध भर जोवन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सैन मुख अपियाओ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कशु न बूझै बख्श लिहो ताओ नानक सीजै जे प्रसाद धर ऊपर सुख बसै सुत भरात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मूड अंध ब्यापे नानक काढ़ लेहो प्रभ आपे आद अंत जो रखन हार तिस्यों प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नवनिध पावै तास्यों मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगै मान तिसे बिसारै मुगद अजान सदा सदा ए भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर पहब प्रीत पासम संग होए अंधकूप मैं पतत बिकराल नानक काड लेहु प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर भेखो अंतर मल माया शपश नाहे काश करै छपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन सुआ गल पाथर कैसे तरह अथा जाकै अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गै लिहो ओढ़ निभावै कहा बुझारत बुझै डोरा नेस कहियै तौ समझै पूरा कहा बेसन पद गावै गूंग यतन करै तौ पी सोर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत ऊहां उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो आवे न चीत जो बैराई तास्यों प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै आनंद कील माया रंग रसै दृढ़ कर मानै मनै प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बिकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बेहाने कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरा सूत्र तहारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जाने नानक दास सदा कुरबानी सलोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागै आन सो आए नानक कहू नसी जई बिन नावै पत जाए अष्टपति दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्तु कारण बिखोट गवावै एक पी न दे दस पी हैर ले तौ मूड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर सेउ नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साहो अपनी देरास खात पीत बरतै आनंद उलास अपनी अमान कश बाहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुरस का विश्वास न होवै जिसकी बस्त तिस आगै राखै प्रभ की आज्ञा मन है माथै उसते चौगन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनेक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओहो बिन सह ओ मन पशुतावै जो दिसै सो चल नहार लपट रहे तह अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावै नेह ताको हाथ न आवै केह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लै लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती असब बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव मुह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान
ਹਸ ਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ, ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ। ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨੈ, ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰੈ, ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਭੇਖਤ ਪਰ ਤਰੈ ਰੂਪਾਦ, ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨ ਸੁਆਦ, ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬੇਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵੈ, ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੈ, ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਤ ਬੇਕਾਰਾ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਪਹੇ, ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ। ਬਿਰਥੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ, ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਕੈ ਦੁਰਗੰਧ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਨ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਇ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਇ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ, ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜਿਹ ਘਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ, ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖ ਹੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ, ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਪੀਨ, ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ, ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪਿਹ ਮਾਨੈ, ਆਪਿਹ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤਨ ਬੇਰਾ, ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ, ਉਪਾਵ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਸਭ ਕਛ ਜਾਣੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਲੜ ਲਾਏ, ਥਾਂ ਥਨੰਤਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਸਲੋਕ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹੰ ਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵੈ, ਤਿਸ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸਾ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੇ ਧਿਆਈ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਹੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ਹੈ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ, ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ, ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਮੁਖ ਤਾਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਉਲਾ ਰਹਿਤ, ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਸ਼ਿਦਰ ਢਾਕੇ, ਮਨ ਸਰਣੇ ਪਰ ਠਾਕੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਮਨ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ, ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ,

सदा दिन रात जिह प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जा सुख है। जिह प्रसाद सुनहि करण नाद जिह प्रसाद पेखै बिस्माद जिह प्रसाद बोलै अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहजे बसना। जिह प्रसाद हस्त कर चलै जिह प्रसाद संपूर्ण फलै जिह प्रसाद परमगत पावै जिह प्रसाद सुख सहज समावै। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागहो गुर प्रसाद नानक मन जागहो। जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनहु बिसार। जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड़ तू ताकौ जाप। जिह प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जिह प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता स्यों राच। जिह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्ब निदान प्रभ तेरी माया आपहु कछु न किन्हु लया। जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक इन कह कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत। साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान। साध कै संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा पर फुलै। साध कै संग आवै पस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग नकत हूं तावै साध संग अस थित मन पावै। साध कै संग माया ते भिन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यों नहीं बैर साध कै संग न बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हो ताप साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई। साध कै संग न कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बसत अगोचर लहै साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान ऊचै साधु कै संग महल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ै सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुरबान। साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब नि सतारै। साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग सोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं काश काल दर्शन भेटत हो तिनिहाल। साध कै संग कलुखत हरै साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इहां उहां सोहेला साध संग बिशरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै साध कै संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग न मनते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग भय आज्ञाकारी साध संग गत भई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जानै जेता सुनै तेता बखे।

जीवड़ ऊंचा हुए कोई तिस ऊंचे को जाने सोई। जीवड़ा आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए। किते मंगह जोद अपार कितिया गणत नहीं विचार। किते खप तुटह विकार किते लै लै मुकर पाहे। किते मूर्ख खाही खाहे कित्या दूख भूख सद मारे। पेदा तेरी दातार बंद कलासी भाने होए। हो राख न सकै कोई जे को काय के आखण पाए। ओ जाने जितिया मुकाए आपे जाने आपे दे आखे से पेके के। जिसनु बख्शे सिफसा लाह नानक पातशाही पातशाह हो। अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार। अमुला वह मुल जाहे मुल पाए मुला सुमाहे। अमुल धर्म मुल दीवान अमुल तुल मुल परवान। अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म मुल फरमान। अमुलो मुल आख्या न जाए आखा करहे लिवलाए। आखै वेद पाठ पुराण आखै पढ़े करह वक्यान। आखै भरमे आखै इंद आखै गोपी तै गोविंद। आखै ईसर आखै सिद्ध आखै केते कीते बुद्ध। आखै दानव आखै देव आखै सुर नर मुंजन सेव। केते आखै आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे। ते किते होर करे ता आख न सकह के। जेवड़ भावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए। जे को आखै बोल बिगाड़ तां लिखिए सिर गावारा गावार। सो दर केहा सो कर केहा जित वै सर्ब संभाले। वाजे नादन एक संखा किते वावन हारे। किते राग परी स्यों कहियन किते गावन हारे। गावै तुहनु पौन पानी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे। गावै चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे। गावै ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सुवारे। गावै इंदे दासन बैठे देवते आदर नाले। गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावै मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले। गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले। गावै जोत महाबल सूरा गावै कहानी चारे। गावै खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे। से तुदनो गावै जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चेतनावन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सतसाहिब साचा साची नाई। है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई। सो पातशाहु साहा पातशाहिब नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख शर्म पत झोली ध्यान की करह बिभूत। किंता काल कुआरी काया जूत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत। आदेश तिसै आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद। आप नाथ नाथी सब जाकी रिद से दवरा साध। संजोग विजोग द्विकार चलावह लिखे आवह भाग। आदेश तिसै आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। एक माई जुगत वे आई तिन चेले प्रवान। एक संसारी भंडारी कलाए दीवान। जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फरमान। ओह वेखै उन्ना नदर न आवै बहुता इहो विडान। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। हासन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सोए कावार। कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। एक दूजी बहु लख हो हे लख हो वै लख वीस।
लक लक गेड़ाया की है एक नाम जगदीश एक राही पत पवड़िया चढ़िया हुए कीस सुन गल्लाया काश की कीटाया ईरीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर च पहने जोर जोर न मंगण दे न जोर जोर न जीवन मरन है जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टै संसार जिस हत जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म कांड का एहो धर्म ज्ञान कांड का आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे काढ़त घड़ी यह रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद केतिया काणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नांत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तितै नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तितै काढ़त घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाही जी को कह पिछे पछताए तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन मै राम रहा भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना उहे मरे न ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करहै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै तै अंत न अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथन कर डासार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाउ खलागन तपताऊ भांडा पाउ अमृत तटाल घड़िए शब्द सच्ची टकसा जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी।

हैं अपीत हैं, त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है, अनिल है अनाद है अजय है आजाद है, अजन्म है अभरण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपांज है, अचूज है अचांज है अमीक है रफीक है अतंद है अबंध है, निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाव है अजा है अनंत है महंत है, अलीक है नरसीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपरम है, अजीत है अपीत है अबाह है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयाछंद, नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकं विनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणे नमो वस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमे अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रे देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे, नमो साह साह नमो पूप पूपे, नमो दान दाने नमो मान माने, नमो रोग रोगे नमस्तंग सुनानंग, नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सचदानंद सर्वं परनासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता दूर दर दंग गंगो हर्ता परम परम परमेश्वर प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्धाता देयालंग चेती अपेदी अनामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तस्ततामंग तेराजोर्चात्री छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयाछंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने, नमस्तुं निर्णाते नमस्तुं परमाते, नमस्तुं गंजे नमस्तुं पंजे नमस्तुंगा काले नमस्तुंगा पाले, नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे नमो साज साजे, नमो साह साहे नमो माह माहे, नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोके नमो शोक शोके, नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग, नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग, नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदारित सिद्धं निवासी चरपड चंप प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल चंत्वा प्रसाद आद रूपन आद मूरत जौन पुरख अपार सर्व मांत्र मान देव अपेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत जौन आद शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो अनुराग नाम काम बहीन पेख ताम न जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदै मान तताहे कुमूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जाने जे वेद और कतेब रूप रंग न जात पासु जानी के जेब तात मात न जात जाकर जन मरण बहीन चक्र बकर फिर चतर चक माने पुरतीन लोग चौदह के विखे जग जापी जे जाप
आद देव नाल मूरत तापियो सबै जी ताप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व सुरचियो स्वयं भव गणन भंजनहार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत अभूत लख अभेश अंग राग न रंग जाकै जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमित अनुष्ट तेक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंग हीन भंग नाथ मेक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन भेद सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम भेद प्राण जाकै नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मद पार चंतव प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन भंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निस्तिन अनास

अन काल अनपूत अंग आभा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अतदुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा पर नाढ़ अंड बाढ़ चाचरी छंतुआ प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे पुजं प्रयाचंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय अजन्मंग जाए न चित्र न मित्र परे है पवित्र परथिशय अधिशय अदृश्य कृशय भगवती छंत्व प्रसाद कथते किया छिज देशय किया भिज पिशय किया गंज करमै किया भंज भरमै किया भिज लुकै किया दित सुकै के अवतूत बरनै के विभूत करनै के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के बर्मं स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आदु अदेव है के आपु अपेव है के चित्रं बहिन है के कै अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अफूल गुनाह है के साहन सा है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिम है के परमं फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुस्नल वजू है तमामुल रजू है हमीसल सलाम है सलीकत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरिफुल अजीम है रिजाय की यकीन है अनिकल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है वो अंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिवादे अगंजे अगादे शुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है कि नरकं प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंत्व प्रसाद
सर्वंग हंता सर्वंग अंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग तर्मं सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल चंत्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं शरीक मितु अमीक सदैवं प्रवाहे जय है अजाहे भगवती चंद्र प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है सुमस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल किराज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकंग प्रनाश है बहस्तुल निवास है कि सर्वल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेक है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुर्रत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के मितो अपंग है मदपार चंत्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हरनर प्रपंज अनगन प्रणाम मन सलाम हरनर अखंड बरनर अमंड अनपवनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जलतल मुदाम अंचिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जलतल अमंड दिश्विश अपंड जलतल महंत दिश्विश बेअंत अनपवनास त्रेतर तुरास आजान बाहु विकै सुदाहु ओंकाराद कथनीय नाद खलखंड के आल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंचिज गात अजिजना बात अंचंज गात अनरंज बात अंटुट पंडार अंडट अपार आडीठ कर्मु अतटीठ कर्मु अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वभारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कलखंड से परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा तप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृतामृत है करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृतामृत है जपा कृत है अमृतामृत है निर्नायक है खलकायक है विश्वंपर है कुरुणालय है निरपनायक है सर्पायक है पवभंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है

ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलय कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार लंके, नमो वास वासे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, कचरी चंद अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनास कासु अगंज अपंज अलख अपक अकाल दयाल लेख अपेख अनाम काम गाह अटाह अनाथि प्रमाथि अजुनी अमोनि नराग नरंग नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजे लेखे पुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासि सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंग सत्रंग प्रणासि करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासि अजाय विभूते गजाय विग्रह में हरियंग करियंग करिमुल रहीम में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पग सुभंग सर्वदा सर्वदा।

मन काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा श्री आसतु जू करे हो रक्षा। राख ले हो मै राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। तीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल योगी शिव की यो वेद राज ब्रह्मा ज्योति। यो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दै जचिन उपजायो। वाद अंत्य कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी। शिव कन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मुँह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने। जाबुद करक करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आ करक करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सिर सब तार है आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब आद नील नाद संभ। ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न भेव। आप अपनी बुद है जीती वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती। तुमरा लका न जाय पसारा के भी सजा प्रथम संसारा। एक कै रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही पूपा। अंडज जीरज सेतज कीनी उत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हवे बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा। शिगरी सेठ दिकाय चम पाव आद जुगाद स्वरूप सोयम पाव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो। दुष्ट जिति उठो तुत पाता सकल मलेश करो रन काता। जी अस्तु तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है। रक्षा हो ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट डरें तत्काला। कृपा दृष्ट संजाहे निहरे हो ताके ताप तनक मैं हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट चाचव सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे लिहो उबारी। सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। कृपा करे हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल भिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन को छय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछित फल पावे सोई दुख न दिस व्यापत कोई डेल। सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई। सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाव निकट न तिन नर के रह। हु जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई। संबत सत्रह सहस पनी जय अर्ध सहस पुन तीन कही जय। पाद्र सुधि अष्टमी रवारा तीर सद्र ग्रंथ सुधारा। सोईया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनियो। राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जानियो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे बखाने दोहरा सगल।

मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया। अरे आपे माता पे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया तां चलत हुआ चलत नदरी आया। कह नान सृष्ट का मूल रचिया, जोत रखी ता तू जग में आया। मन चाओ भया प्रभागम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे। आपना फिर जापे अनहत बाणी, गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभा मिलिया करन कारण जो गुवे, शरीरा मेरे इस जग में आए कह। क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक उस शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर से चित लाया। ये नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मैं जो तरी। हर बिन वर न देखो कोई, हर बिन वर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। एहो वे संसार तुम देख दे, हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा, हर कह हर बिन वर न कोई। कह नानक नेत्र अंध से सतगुर मिलया, दिव दृष्ट हुई। श्रवण हो मेरे हो, सच है सुन नैनो पठाई। सच है सुन नैनो पठाई, शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुनी मंतन हरिया, हुआ रसना रस मानी। सच लख विडानी ताकि गत कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हुओ, सच है सुन नैनो पठाए। हार जियो गुफांदर रख कह, वाजा पवन वजाया। बजाया वाजा पाउन नौ द्वारे, प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारा लाए भावनी, इक ना दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाव नव निध, तिष्टांत न जाई पाया। कह नानक हर प्यार है, जियो गुफांदर रख कह, वाजा पवन बजाया। एहो साचा सोहेला, साचे कर गावो। गावो ता सोहेला कर साचे, जिथे सदा सच त्यावहि। सचो त्यावहि जात तु भावहि, गुरमुख जिना बुझावहि। एहो सत सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावहि। कह नानक सच सोहेला, सच्चे घर गावहि। आनंद सुनहु।

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजी अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तूठा

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लें त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास साहु सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठ है सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है करनाओ निद्या वै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय दसा पातशाही दी जोत श्री

कुदरत दसा कुदरत सुनिए कुदरत पाहो सुखसार कुदरत पाता ली आकाशी कुदरत सर्ब आकार कुदरत वेद प्राण कतिबा कुदरत सर्ब विचार कुदरत खाना पीड़ा पहनन कुदरत सर्ब प्यार

नानक नाम निरंजन गायो, नानक नाम निरंजन जानियो कीनी भगत प्रेम लिवलाई। ताते अंगद अंग संग पयो सायर, तिन शब्द सुरत कीनी वरखाई। गुर अमरदास की अकथ कथा है, एक जी काश कही न जाई। सोडी सिरसट सकल तारण का, अब गुर रामदास को मिली बड़ाई। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत शाड विख विख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई।

गुरु सवारी संगत जी बहुत ही प्यार सहित गुरु फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग पतत पावन दया सिंध कृपा निध गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी दसां पातशाहियां दी जग दी जोत जुग हो जुग अटल गुरु गरीब निवाज धन धन धन धन धन सतगुरु आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरु सवारी संगत जी सतगुरां दी अपार बख्शिश प्राप्त हुई है। अमृत वेले दा सुभागा समां प्राप्त होया है। सतगुरु जी दे अमृत बोले माह के बोलन भुलिया केड़े बोल मुख तो बोले जान जिन्ना बोलन द्वारे मेरी गुरु नाल बनावे। फिर अर्ज करां मेरी गुरु दे नाल प्रीति बन आवे तो महाराज कहिंदे ने अमृत वेले रसना द्वारे उस वाहिगुरु निरंकार जी दी वड्याई कर। महो के बोलन भुलिया जित सुन धरे प्यार ता जवाब आया अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार और नाल नाल अंदर नू गहराई विच लेके आना है। करमी आवा कपड़ा इस शरीर रूपी कपड़ा मिलिया है परमात्मा ने दता है

अनेक कोठरिया भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न करिया विच मन कूट वरिया निज मंदर प्रिया ताहा आनंद करिया नह मरिया।

ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुरह पठाया रहाउ। महादुत्तर माया जैसे पवन चुलाया, सुन सुन ही डराया, करो त्रम राया, ग्रह अंध कूप आया, पावक सगराया, कही ओट साधाया, नानक हर त्याया।

खोजत खोजत भया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं।

निमख सिमरत जित छूटै, संतहो सागर पार उतरियै, जे को बचन कमावै संतन का, सो गुर

परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंधकूप ते काट लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल।

अपनी भगत प्रभ आप कराई, आपे सेवा लाए, भरम गया भय मोह विनासे, मिटिया सगल विसूरा, नानक दया करी सुख दाता, भेटिया

0: जिष्णु किर हर कृपा धारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कृपा सदका गुरु चरणा विच बैठ के, घरां विच बैठ के रब्बी बाणी दे श्री सहज पाठ का लाह प्राप्त कर रही गुरु रूप साध संगत जी, आप जी तनता योग हो जो निता प्रति सतगुरु जी की पावन पवित्र बाणी दे नाल जुड़दे हो, जो सरबत दे भले वास्ते श्री सहज पाठ हर रोज़ आप जी अमृत वेले सुबह दे वेले 9:15 तो 10 बजे तक सरवण करते हो। सो सतगुरु जी कृपा करन, समूह संगत दियां हाजरियां दर प्रवान करन, सबना नू दरों करों चढ़ दियां कला बख्शिश करके सतगुरु जी निवाजन। अगाध बोध बाणी दा भाव समूह परिवारां नू सतगुरु जी बख्शिश करन। बाणी पढ़दियां बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईयां हन, आप संगत कृपालू सतगुरु जी बख्शी योग ने, भुला ना चितारनिया। प्यार सत फतेह गजाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो आओ जो अज साहिब सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह दतार पिता महाराज जी ने जो मीरी पीरी दियां तलवारां बद्धियां सन, मीरी पीरी दिवस सिख इतिहास विच बड़ी वड्डी थां रखदा है, जिस अंदर सतगुरु दतार पिता महाराज ने जो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह तो लैके पंचम पातशाह तक पीरी की शक्ति बख्शिश की, पीरी की दात दिती, छेवें गुरदेव ने फिर पीरी दे नाल मीरी नू जोड़िया। सो मीरी पीरी दिवस जो सतगुरां ने श्री अकाल तख्त साहिब ते मीरी पीरी दियां तलवारां बद्धियां सन, उस दिवस नू बड़े माण नाल बड़े गौरव नाल याद किया जाता है। सो सतगुरु दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी दे उस पावन पवित्र दिहाड़े नू याद करदिया अज सिख गुरद्वारा सैन होजे वालों भी जो विशेष कीर्तन हाजरी है, उस सत्कारयोग भाई साहब भाई हरभजन सिंह जी लहरी अते उन्हां दा जथा आप जी नू सतगुरां दी अमृत बाणी दे कीर्तन नाल जोड़ेगा। आप जिया ने प्यार सहित सतगुरां दी पावन पवित्र बाणी दे कीर्तन सरवण करने हां जी। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਭਾਜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ।

उस सेवक को कोई भी दुख पौंदा नहीं जिस सेवक दे सिर ते सतगुरु दा हाथ होंदा है। सतगुरु जी बाणी च फरमान करदे ने, सब सहे ऊपर नजर प्रभ तेरी, किसे थोरी किसे है कनेरी। निगाह सतगुर दी सब दे ऊपर है, कृपा बरस रही है, पर किसी ते थोड़ी है, पर किसी ते बहुत है। जिदे ते बहुत है, जिदे ते सतगुर दी प्रसन्नता है, सतगुर जी तुट के उसनों सतसंगत दी दात दिंदे ने, नाम दी दात दिंदे ने, अपना बना लैंदे ने। उस सेवक दे सतगुर जी सारे कार्य रास करदे ने। यही नहीं, ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। उस अपने सेवक दे ये लोग ते परलोक दोनों ही सहेले कर देंदे ने, किदे जिदे ते सतगुर दी नजर करेरी है। जो सेवक सतगुरु नूं समर्पित हो जाता है, जो सतगुरु दे वचना ते सेवक चलता है, गुरु उस दे उपर कृपा करता है। गुरु प्यारियो, मैं एक गल जरूर कह दिया, हर एक इंसान दी कोई ना कोई पटकना है। कोई किते पटक रहा है, कोई किते पटक रहा है, कोई किसे नूं रब माने बैठा है, कोई किसे नूं रब माने बैठा है। जिन्ना चिर इंसान ये ओट आसरे बारले तकदा है, उन्ना चिर ये इंसान ये जीव धक्के खांदा है। किदां धक्के खांदा है? फिर एक जोन विच नहीं जांदा, अनंत जोना भोगदा है। पातशाह जी बाणी विच सानू फरमान करदे ने कि देखो, ईमान सुजन्म दुलंभ है, होए ना बार है बार। ईमान सुजन्म दिता है, समझ दिती है, ज्ञान इंद्रियां दितियां ने, नेत्र दिते ने, कान दिते ने। पर गुरु प्यारे, मैं आप जी ने एक गल होर भी नाल दस दिया, तुसी कदी विचार करना, कले बैठ के देवते ने हाले मुक्त नहीं होए। उन्हां दे कोल एक विकसित मन है, बहुत विकसित मन है, सातों भी कितने ज्यादा दीवा बलिया होया है। पर लेकिन मुक्त होने वास्ते इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। वो देवते भी इस देही नूं सिमरदे ने, उसनूं कहिंदे ने, हे अकाल पुरख साडे ते कृपा कर, सानू भी मानस जन्म बख्श, ताकि असी रहिंदा पेंडा जिहड़ा है वो भगती करके तेरी असी तय कर सकीए, तेरे विच लीन हो सकीए। हुण देवतियां कोल विकसित मन है, पर मुक्त होने वास्ते तन नहीं है। उन्हां नूं भी एक बार फिर माता दे गर्भ तो जन्म लेना पैंदा है। एक पशु है, उस पशु दे कोल विकसित तन है, बड़ा विशाल तन है हाथी दे कोल, बड़ा ताकतवर शरीर है शेर दे कोल, पर विकसित मन नहीं है उसके कोल। ये मन तन सतगुरु जी ने एक सिर्फ इंसान नूं बख्शा है। जिथे इसनों मन की दात दिती है, तन की दात दिती है, इतने इसनों सारी समझ भी दिती है। ता ही सतगुरु जी कहते हैं कि ऐ जीव, नहीं तो तू इस पौड़ी ते जो नर छुटके से आए जाए दुख पाएगा। जो ये पौड़ी तेरे हथों छुट गई ना, तो फिर तेरा आन जान का गेट बन जाएगा। फिर की होगा? केते रुख विरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली महयाए, केते पंख उड़ाए। कई जूना तू दरख्तां दियां, जानवरां दियां, उड़न वाले पंछियां दियां, पशुआं दियां, सप्पां दियां भोग के आया है। कई जूना तू पत्थरां दियां भी भोग के आया है। केते रुख विरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली महयाए, केते पंख उड़ाए। इस करके इनिया जोना भोगण तो बाद 84 लाख जोना भोगण तो बाद तेनू ए पई प्राप्त, मानुख दिहोरिया गोविंद मिलन की एहो तेरे भरिया। जिहड़ी तू आवागौन दी भटकना शरीर विच रह के कर रहा ने, कदी किसे दे दर ते, कदी किसे दे दर ते, तू उस परमेश्वर दा हो जाए। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा हो, जदों तू परमेश्वर दा बन जाएगा सारा संसार तेरा बन जाएगा।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਨਾ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,

हर बाणा गुरु पाया, मेरा हर प्रभ कैसा वास जियो, भगत सतगुर प्रकुशोई, जिस हर प्रभ बाणा बावे, आनंद अनहद वजे वाजे, हर आप गल मेलावे, तुसी पुत भाई पर

काल पंडित दियो, हर हर कथा पढ़े पुराण दियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग रूपावे।

Apasarihi. काका सिमरनजोत सिंह जी जिन्हों बड़े प्यार दे नाल आपा सारे रोबर कहिंदे सी, सुपुत्र सरदार रूप सिंह जी, बीबी नरेंद्र कौर जी, तिन्हां दे होनहार सुपुत्र जिस तरह आप जी ने पावन पवित्र वचन शेखपुर जी के सरवण किए हैं, हरीदा दरिया वे कलन बगला बैठा केल करे केल करते हैं, जनों चिंते बाज पे तिसरब दे केला सरिया, जो मन चितना छेते संसो गाले रब किया। सतगुरा दे एक होर बचन दर्शांदा के पाई, नह बारिक नह जोब नह नह बिरदी कछ बंद, ओ बेरा न बुझे जो आए पर जम्पन। मौत रूपी काल जेड़ा है वह भी किसी दे आग्या दे विच है, आई आग्या तिरहों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया। जिस वेले समा आ गया काल मौत ए नहीं वेखदी कि मनुख दे कोल कैसी उम्र है, बचपना बाल उम्र है जवानी जा बुढ़ेपा, आई आग्या किरहो बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया। फिर कई बारी जिस वेले फल पके डिगदा है कोई रोस नहीं है, पर अचिंते बाज पै जाने एथे हर मनुख दामन बैराग विच आ जाता है कि मालका जिस वेले दरखत नालों कच्चा फल टुटदा है तां उत्थे वेखदे हां आपां पानी वह पैंदा है क्योंकि अजे कच्चा है। बड़ा औखा समा है, कारण कुछ भी होवे उस मालक प्रभु दी अपनी आज्ञा है। मरण लिखाए मंडल में आई, जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको की जय। सद नमस्कार परिवार नो, सदा लई एक बैराग दे विच छड़ के चले गए ने पर जवानी दे विच। धन गुरु अमरदास जी महाराज गोविंदवाल साहिब संगतां नू उतार रहे हैं, कहिंदे ने नगर दे विच किसी दा पुत्र जवान चढ़ाई कर गया, सतगुरां ने जदों मां दी ओ बैराग में आवाज सुनी, सेवकां नू बेनती कीती गई कि मालक जी अपने नगर दे विच कोई जवान पुत्र अपने परिवार नू छड़के चलिया गया है। किसी ने अरदास की, मालक जी तुहाडे हुंदे होए सतगुरां ने जिस वेले ओ दर्द भरी आवाज सुनी ते बचन कह दिता कि भाई अज तो बाद कोई जवान पुत्र साडी नगरी दे विच छड़के नहीं जाऊगा। पर फिर किसी ने सवाल खड़ा कर दिता कि मालक कदों तक, ते फिर सतगुरां ने बचन कह दिता कि भाई जदों तक असीं इत्थे हां। कहण दा भाव यह बड़ा समा औखा है, पर सतगुरु पातशाह अग्गे आपां तां ही अरदास करदे हां कि मालका रहमत बख्शिश करी, परिवार ते मेहर परियाहत रखी। पाणा औखा है पर ते जे तू सहारा देवे तां इह पाणा भी मन सकदे हां अपने चन्नां नाल जोड़ के रखी मालका। सो आओ ज्यादा समा नहीं, जिन्नी
ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਕਾਕਾ ਰੋਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ